पता नहीं क्यों ये शुरू नहीं हुआ, पता नहीं क्यों ये तैयारी नहीं होती है। मैं कुछ नहीं कह सकती, सारा बंद हो गया, सारा दुनिया बंद हो गया, पता नहीं क्यों ये बंद हो गया, पता नहीं क्यों मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं कुछ नहीं कह सकती। तुसी सुन रहे हैं मैं की क्यों हूँ, मैं कुछ नहीं सकता, पता नहीं क्यों मैं कुछ नहीं कह सकती।